असंख जप असंख पाव असंख पूजा असंख तप्ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता और असंख सूर मुह पक्षार असंख मून लेवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख कमलेश मल पख खावे असंख निंदक सुर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख अहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तिस सिर नाहि जे फुरमाए

कालान कालन भूत अंग अपाय भंगत मित अपार मुनगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय काम दुत प्रचंड मित गत अखंड।

सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंधर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता और सर्वलक्षणत्वय प्रसाद। नमो नरकनाशेष दैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथम परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाहे अजय है अजाहे भगवती शांति।

गौतमित्य उदार जलथर अमंड सुसोपन जलथर महन दस्मस्मियंतन भवनास्त्र तरत्र आसा जान बाहुई के सदा ओंकार याद कथनीय नाद खल खंड गयाल गुरबर अकार घर घर प्रणाम चित चरण नामन छिज गात अजिज न बात हन झंझ गात नरंज बात अन टुट भंडारण ठट अपार अडीठ धर्मत ढीठ कर्म अणभ्रण अनंत।

करुणा ने है और काले हैं, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के कर्ण है, मन मानिए है, जग जानिए है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्व पासी है, सर्वनाशीय है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजप जप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजप जप है।

अमृत है। अजवाओ कृत है अमृता अमृत है, निर्णायक है खलकायक है, विश्वंपुर है करुणालय है, नृपनायक है सुरपायक है, पंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्मा सर्वात्मे आत्म बस है, जस की जस है भुजंग पर्यात छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सुताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पार पाने, नमो कलह कर्ता।

कलंकार रूपे अलंकर अलंके नमो आसुआसे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रे भंगी त्रे काले अनंगी अकामे एक अछरी शान अजय अलय अपय अभय अपुआ जुआ नास अकाश अगंजा पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ परमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रं प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुपंग सर्वदा सर्वजुगते

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई हमरी करोहा दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तप चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावह आप भाव दै मोहि बचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिये सब बैरन कौ आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई वरना

नमस्कार तसिही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहब्बत कियो काट काट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पशांत चीटी ते कुंजरे सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संत

जब युद्ध करख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलते तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारा आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब वादा नीनानाद समता का मूड उचारत भेदा जाको पेव न पापत भेदा

कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंप भया जुगा स्वरूप सुयम भव आवर अच्छा मेरी तुम करो सिखे उबार सिखे संगरो दुष्टि ते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तपाया सहज से ती मन बनिया वादा हियां राग रतन परवार परियां शब्द गावनाइयां।

मायाग्न सभी को देही करते खेल चाया जात पाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया

कर्मजैः कानजैरीराम। तुम गौहर अति गहर गंभीरा, तुम पे रहम भलिया राम, तुम बल्ले बल्ले बल ऊँचे हो, हों इतनी कलहुलिया राम। हों के चुना ही एको तू है, आपे आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमकम जीवा, सर्व रंग रसमाना, तरुण है सनी दास है दासी माना, मोला तन हरिया, नानक ठाकर सब समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतराई तेरी जो तू जाना है, जाना राम सोई जाना सोई पछाना, जाको नंदर सिंदे मन मुख भूली, बहुती राही फाती माया फंदे, ठाकुर पाणी साहब गुणवंती तिन ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकर तू नानक का माणा। ओम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा उला राम, हों बल जाई लख लख लख भरिया, जिन परम परदा खुला राम, मिटे अंधारे तजे बेकारे, ठाकर सिव मनमाना, प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परमाना, पई अमोली पारा तोली, मुक्त जुग दर खुला, कहो नान कहो निरपो होई, सो परम मेरा उला। सूही महला पंजवा, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अब न जाना राम, मात पिता भाई सतबंध पे जी, प्राण मन पाना राम, जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा भर पूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्व रहया भर पूरे, ताकि सरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा सदा सदा प्रभ को बलिहारा, नानक सद कुर्बाना, ऐसा गुर बड़भागी पाई है, जित मिले है प्रभ जा पै राम, जन्म जन्म के किलवे उतरे, हर संत तूड़ी नित ना पै राम, हर तूड़ी नाइये प्रभु तिहाइय, बौहड़े जुन ना आइय, गुरचनी लागे परम्पो पागे, मन चिंदिया फल पाइय, हर गुण नित गाए नाम तिहाय, फिर सो गुण ही संताप है, नानक सो प्रभ जी का दाता, पूरा जिस प्रताप है, हर हरे हर गुण निधे, हर संतन कह बस आए राम, संत चरण गुर सेवा लागे, तिनी परम पद पाए राम, परम पद पाया आप मिटाया, हर पूर्ण कृपा धारी, सफल जन्म हुआ पहो पाग्या, हर पेटिया एक मुरारी, जिसका साथ इन्हीं मिल लिया, ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया, मेरे सतगुर सुख पाया, गा मंगलो नित हर जन अपन जन हो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरनाया वह जाई राम, अबनासी पाया नाम ते आया, सगमनोर्थ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे, गुरचनी मन लाए, पूर रहया कट कट अबनासी, थान थन अंतर साई, कहो नानक कारज सगले पूरे, गुरचनी मन लाई। सूही महला पंजवा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देख दर्स तेरा राम, लाख जेवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम, हर आराधे जम पंथ साधे, दुख न व्यापै कोई, जत थल महियल पूर्ण स्वामी, जत देखा तत सोई, परम मोह पे का नाठ है प्रभ, नेर हूँ ते नेरा, नानक कौ प्रभ कृपा की जय, नेत्र देख है दर्श तेरा, कोट करन दी जय प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिह अबनासी राम, सुन सुन एह मन निर्मल होवै, कटिया काल की फांसी राम, कटिया जम फांसी सिमर अबनासी, सगल मंगल सो ज्ञाना, हर है जप जपिया दिन राति, लागै सहज ध्याना, काल मन दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, हर गुण सुनिह अबनासी, करोड़ हस तेरी टहल कमावे, चरण चलहे प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव सो हर सेवा जो चढ़ै तिस तार गराम, पव जल तरिया हर हर सिमरिया, सगम नोर्थ पूरे, महा बेकार गए सुख उपजे, बाजे अनह तूरे, मन बांछत फल पाए सगले, कुदरत कीम अपारग, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, मन सदा चलै तेरा मार्ग, एहो वर एह वड़ियाई, एहो तन होए वड़पागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा, चरनी मन लागा राम, मन लागा चरने प्रभ की सरणे, करुण कारण गोपाला, सब किश तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा, हर जपे हर मंदिर साजा, संत पद गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजावे राम, हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अति मीठी, कथी अकथ कहानी, भला संजोग मूर्त पल साजा, अबजल नीव रखाई, जन नानक प्रभ पह दयाला, सर्व कला बण आई, आनंदा वजह नित वाजे, पा ब्रह्मन बूठा राम, गुरमुखे सच करनी सारी, बिनसे परम पै झूठा राम, अनहद बाणी गुरमुख बखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया, सर्व सुखा तिस ही बण आए, जो प्रभे अपना करिया, करम है नव निद परे पंडारा, राम नाम रंग लागा, नानक जन प्रभ कदे न विसरै, पूरन जाके भागा, छाया प्रभ छत्रपत किन्नी, तब सगली तब ते बिनासी राम, दुख पाप का डेरा ठाठा कार, जय आया रासी राम, हर प्रभ फरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन

कोई ना हुए, ऐसी दरगह साचा सोई रहाओ। प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन जाओ। पांडे पाओ पवे तिथियाए, तुरते छूडी कीमत पाए। जैन किश किया सो किश करे, अपनी कीमत आपै तरे। गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए। लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान ना पाया। सह किया गला दर किया बाता, तहता कहन कहाया। राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर। कमन बुझै बिद जाने, उत्प चलते आप कर चीने। आपे तत् पछाणे, ऐसा ज्ञान बिचारे कोई। तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहण रहण में दिनियर, उसन सीत बिद सोई। ताकि गत में तेवर न जाने, गुरबिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई। नानक तिनके सद बलिहारी, जन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला पहला, जा हर प्रभ कृपा तारी। ता होमे विचो मारी, सो सेवक राम प्यारी। जो कर शब्दी बिचारी, सो हर जन हर पा पावे। एनस भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे। रहाओ तुन वाजे अणहद कोरा, मनमान्या हर असमोरा। गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारग पाणी। तै तीर्थ वर्त सब सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे। जय आप गया पौ भागा, गुर चरनी सेवक लागा। गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत पागे। खुदिया दुष्ट जले दुख आगे। गुरमत लई नीनी दुरमत पद खोई, गुरमुख भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज कर वासे, एक दृष्टि को कर देखिया। भीख्या पाए शब्द तृप्ता से। रहाओ पंच बैल गड़िया दे तारी, राम कला निभे पत सारी। तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार। गुरका शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बेयोगी। भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी। सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा। मन में मुंद्रा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा कर पहला। सतयुग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को बीचार। जोग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवै। गुरबिन नाम न पावे कोई। रहाओ त्रेते अकल कीनी दूर, पखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझै सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, भरम भुलाने जाने दोए। द्वापर धर्म दोए पैर रखाए। गुरमुख होवे ता नाम दड़ाए, कलयुग धर्म कला एक रहाए। एक पैर चले माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार। सतगुर भेटै नाम उदार, सब युग में साचा एको सोई। सामे सच दूजा नहीं कोई, साची कीर्त सच सुख होई। गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब युग में नाम उत्तम होई। गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम त्याए भक्त जन सोई। नानक जुग जुग नाम वड्याई होई। राम कली महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे बड़ भाग हुए बड़ भागी, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमत पद करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवे लव लागे। गुरमत हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवेहिर माणक, बहु सागर भरपूर किया। जिस बड़ भाग होवे बड़ मस्तक, तैन गुरमत कड़ कड़ लिया। रतन जवेर लाल हर नामा, गुरकड़ तली दिखलाया। भागहीन मन मुख ने लिया, तन ओलै लाक्ष पाया। मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हिर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल पिया आनंदा। हर नीकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल। सतसंगत मिल बुद पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए। जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सो हाए। रहाओ जे बड़ भाग हुए मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए। दर्शन संत देव कर कृपा, सब दर्द दुख लह जाए। हर के लोग राम जन नीके, भागहीन न सुखाए। ज्यों ज्यों राम कहे जनी उचेर, नर निंदक डंस लगाए।

देविया नहीं जाने मारम सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरे आपे मेल एक भर में एक भगती लाए अपना की आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी नहीं लेप तिस पुन न पाप नानक का प्रभ आपे आप राम कली महला पांजमा किछो काज न कियो जान सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किछो न जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिंदु जावर न कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहो रिद न बुद्ध न सिद्ध परगास बिखे व्याध के घाव में वास करन हार मेरे प्रवेक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगनत जी का दाता जिसे जनावे तिन तू जाता जो पायो तिस तेरी आस सगल राधे प्रभ गुण तास नानक दास तेरे कुरवान बेअंत साहिब मेरा मेहरवान राम कले महला पांजमा राखण हार ध्यान कोट पव खंडे निमख ख्याल सगल राधे जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीवन को दाता मेरा प्रभ पूरन परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहो ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हिरदे जप परमानंद मन में पय आनंद तारण तारण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे अपहार सोमत सार जित हर सिमरीज कर कृपा जिस आपे दीज सुख सहज आनंद हर नौ नानक जपया गुर मिल नौ राम कले महला पंजमा सगल सियाण पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों आसा मनसा पूरन होवे पावे सगल निदान गुर स्यों रहो दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान मिले निमाणे मान गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान तान दर घे पावे मान गुर का वचन जप मंत एहा भगत सार तत सतगुर पहे दयाल नानक दास सद निहाल नानक दास निहाल राम कले महला पंजमा होवे सोई पल मान अपना ताज अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जाप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मत निर्मल रहाओ एक की कर आस पितर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमशक हर पब जल उतरे पार देवन हार दतार अंत न पारा वार जाके कर सर्ब निधान राखण हार निधान नानक पाया हो निधान हरे हर निर्मल नाम जो जपे तिस की गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कले महला पांजमा दो लब दे सवार जाए नंदर गए हार हालत पालत तो दोए वड्याई अंत की बेला लय छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पालत होए दो में सोहेले अचहर्ज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन से सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम हो कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पहार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनी जै नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पंजमा
जिसके तिसके कर मान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोय तिसे राध सदा सुख होए काहे ब्रह्म पर में बिगाने नाम बिना किच काम ना वै मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहो जो जो करे सोई मान लेहो बिन माने रल हो वेखे तिसका पाणा लाखे मीठा गुर प्रसाद बिरले मन बूठा बेपरवाह अगोचर आप आठ पैर मन ता को जाप जिस चेते आए बिन से दुखा हालत पालत तेरा उजल मुखा कौन कौन उधर है गुण गाए गण न जाए केम न पाए वूडत लो साध संग तरे नानक जिसे प्राप्त करे राम कले महला पंजमा मन में जाप भगवंत गुर पूरे हो दिनो मंत मिटे सगल पह त्रास पूरन होई आस सफल सेवा गुरु देवा कीमत किछ कह न जाए साचे सच अलख पेवा रहो कर्ण करावण आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा कर नीत सच सहज सुख पावे मीत साहिब मेरा अत पारा किन में थापो थापण हारा तिस बनिया वरना कोई जानका राखा सोई कर किरपा अरदास सुनी जै अपने सेवक को दर्शन दी जै नानक जापी जप जाप सब ते ऊच जा कह परताप राम कली महला पांजमा बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छुटी सब आस अचिंत ठाकर पेटे गुणतास एको नाम त्याए मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण कारण चरण कमल हर सरण मन तन हर उही त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निधान राखण हार निधान सर्ब की रेण हो वीजै आप मिटाए मिली जै अन दिन त्याये नाम सफल नान के हो काम राम कली महला पांजमा कारण कारण करीम सर्ब प्रतपाल रहीम अलह अलख अपार खुद खुदाए बड़वे सुमार ओं नमो भगवंत गुसाई खाल करव रया सर्ब ठाई राहो जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद मह राधो रिखि केस गोपाल गोबिंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद मेहरबान मौला तू ही एक पीर पैकाम्बर सेघ दिला का मालक करे हाक कुरानक तेव ते पाक नारायण नर हर दयाल रामत राम कट कट आधार वास देव वास सब ठाए लीला किछ लखी न जाए मेहर दया कर करणे हार भगत बंदगी दे सिर जनहार को नानक गुर खोए परम एको हल्लो पार ब्रह्म राम कली महला पंजमा कोट जन्म के बिनसे पाप हर हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महाविकार तन ते खै सब नसे गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समाणी रहो तृष्णा पुख सब नासी संत प्रसाद जपया विनासी रैन दिनस प्रभ सेवक मानी हर मिलने की यह निशानी मिटे जंजाल होए प्रभ ध्यान गुर का दर्शन देख निहाल परा पूर्वला करम बण आया हर के गुण नित रसना गाया हर के संत सदा परधा परवान संत जना मस्तक निशान दास की रेण पाए जे कोय नानक तिसकी परम गत होए राम कली महला पंजमा दर्शन को जाइए कुर्बान चरण कमल हिरदे तर ध्यान संतन तहूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिस पेटत मिटे अभिमान पार ब्रह्म सब नदरी आवै कर कृपा पूरन भगवान रहाओ
गुर की कीरत जपिए हर नाम, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे नब्या पे तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोबिंद पढ़ दे सब काजे, गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर दाता दयाल बख्सिंद, गुर चरनी जाका मन लागा, नानक दास ते सपूरन पागा। राम कले महला पंजमा, किस परवासे बिचरे पवन, मूड मुगद तेरा संगी कवन, राम संगे तिस गत नहीं जाने, पंच पटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविये दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहो, जन्म बिहानो अंकार यारवाद, तृप्त नावे विख्या साध, परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाए दुतर माया, काम नावे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे, राखण को दूसर नहीं कोए, तो निस्तरे जो कृपा होए, पत तुपनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को कीजे दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, सरन गए नानक प्रभ तेरी। राम कले महला पांजमा, एह लोके सुख पाया, नहीं पेटत धर्म राया, हर धर गै सो बावंत, पुण गर्व नहीं बसंत, जाने संत की मित्राई, कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाओ, गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सभागा, संत की तुर लागी मेरे माथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध प्राणी, जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूठा, मिटाने को सब काल कलेश, जिस ते उपजे ते समय परवेश, प्रगटे अनूप गोबिंद, प्रभ पूरे नानक बख्सिंद, राम कले महला पंजमा, गौ को चारे सार दून, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हसी प्रतपाले, अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे, वरन न साको वो गुण तेरे रहो, देसत मास न खाए बिलाई, महाकसाव शुरी सट पाई, कर्ण हार प्रभ हृदय बूठा, पाथी माछले का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलोल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न निवारी सत गुरदेव, सेवक अपने लायो सेव, अकृत कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा ध्यान, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरणाई। राम कली महला पंजमा, पांच सिंह राखे प्रभ मार, दस बघ्याड़ी लई निवार, तीन वर्त की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोबिंद, कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद रहो, दाज गै तृण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, आनंद रूप प्रगट्यो सब तान, प्रेम भगत जोरी सुख मान, सागर तरियो वाचर खोज, खेद न पायो ने फुन रोज, सिंध समायो कट के माहे, करन हार को कुछ चार जनाए, जो छूटो तो जाए पयाल, जो काढ़ियो तो नदर निहाल, पाप पुन हमरे वस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली महला पांजमा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया मोह व्याप्या तोहे, कुदम करे गाडर ज्यों शैल, अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरणाए मना, राम नाम जप संग सहाय, गुरमुख पावे सच तना रहो, ऊने काज न होबत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे विकार जी रह कहताई, गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तो अनक शल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर शाने,
ਜਿਨ ਦਿਆ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਮੋਲ, ਮਿੱਤਿਆ ਲੋਭ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸੋਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਪਏ ਦਿਆਲ, ਇਹੋ ਮਨ ਹੋਆ ਸਾਦਰ ਵਾਲ, ਹੱਸ ਕਮਲ ਲੜ ਲੀਨੋ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਕੇ ਰਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੋ ਜਨ ਦੋਤਰ ਪੇਖਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਪਨੇ। ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਹਾਥ ਗੁਰ ਤਰੇ, ਸੋ ਦਾਸ ਦੇਸਾ ਕਾਹੇ ਕਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਕਲੋਕੀ ਕਾਣ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੀ ਉਪਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਭੇਟ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਸ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਪਵ ਜਲ ਤਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਾਧ ਪਿਆਰੇ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਤਜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪੀ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਈਦਨ ਸੇ ਬੈਸਾਂਤਰ ਪਾਗੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦੈ ਦਿਸ ਤਿਆਗੇ, ਉਪਰ ਚਰਨ ਤਲੀ ਆਕਾਸ, ਕਟਮੇ ਸਿੰਧ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ, ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹਰਿ ਜੀਓ ਆਪ, ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰੇ ਜੀ ਭਗਤਨ ਕੈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਖਣ ਪਾਛੇ ਦੂਧ, ਮੈਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬਣ ਸੂਧ, ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ, ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਿਰੇ। ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਬਦੇਹੀ ਦਿਸੈ, ਸਗਲੇ ਸਾਜ ਕਰਤ ਜਗ ਦਿਸੈ, ਠੱਗਣ ਹਾਰਿਅਣ ਠੱਗਦਾ ਠਾਗੇ, ਵਿਣ ਵੱਖਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਲਾਗੇ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਖਿਆਣ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਥੀਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਆਨ ਬਿਆ ਰਹਾਉ। ਪੁੱਤ ਕਲਤਰ ਲਖਮੀ ਦਿਸੈ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਿਛੋ ਨ ਸੰਗ ਲਿਆ, ਵਿਖੇ ਠਗੋਰੀ ਖਾਏ ਪੁਲਾਨ, ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਿਗੋਤਾ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਪਿਆ, ਪੂਰਬ ਕਮਾਣੇ ਛੋਡੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਮਦੂਤ ਗਰਸਿਓ ਮਹਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ ਅਵਰਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬਹੁਤ ਹਿਆ, ਅਸਾਦ ਰੋਗ ਉਪਜਿਆ ਸੰਤ ਦੁਖਨ, ਦੇ ਬਿਨਾਸੀ ਮਹਾ ਖਿਆ। ਜਿਨੇ ਨਿਵਾਜੇ ਤਿਨ ਹੀ ਸਾਂਝੇ, ਆਪੇ ਕੀਨੇ ਸੰਤ ਜਯਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾਈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਦਰਸਨ ਪੇਖਤ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੋਰ ਘਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ, ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਗਲੇ ਤਨ ਕੇ। ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਪਤ ਤੂੰ ਉਧਾਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾਨ, ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ਬਿਨ ਸੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਏਕ ਧਿਆਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪ ਬਿਨਾ ਸੇ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਿਆ ਗੁਣਤਾਸ, ਦਰਸ ਦੇ ਤਾਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਸ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਵੇ ਸੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੋਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਾਵੋ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਰਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੋਵਤ ਪਰਗਾਸ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਵ ਜਲ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ ਰਹਾਉ। ਏਕ ਅਰਾਧੋ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ,
गुर पूरे सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आप। राग राम कली महला पंजमा, पड़ताल घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नर नरे नमस्कार, जलन थलन बसुद गगन, एक एक ओंकार रहो। हरन तरन पुन पुने करण, नै गृह निरहारण, गंभीर तीर नाम हीर, ऊच मूच अपहरण, कर्ण केल गुण अमोल, नानक बलिहारन। राम कली महला पंजमा, रूप रंग सुगा।

जन्म जन्म के पाप खोए के पुन वैकुंठ सुधावे। अजा मल को अंत काल में नारायण सोध्याई, जागत को जोगी सर्वांचत सोगत शिन में पाई। नाहिन गुण नाहिन किच विद्या, धर्म कौन गज कीना। नानक विरद राम का देखो अवेदान तै दीना। राम कली महला नौवा, साधो कौन जुगत अब कीजै। जाते दुर्मत सगल विनाशे, राम भगत मन पीजै रहो। मन माया में उर्ज रहो है, बूझे नै किछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाणा। पए दयाल कृपाल संत जनता बे बात बताई। सर्व धर्म मानो तै किए, जय प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निसवासर में निमख एक ओर धरे। जम को त्रास मिटे नानक तै अपनो जन्म सवारे। राम कली महला नौवा, प्राणी नारायण सोधले। छिन छिन औध कटे निसवासर, विरथा जात है दे रहो। तर नापो बिखियन स्यों खोयो, बालपन अज्ञाना। बिरद पहयो जू नहीं समझे, कौन को मतुर जाना। मानस जन्म दियो जय ठाकर, सोते क्यों बिसरायो। मुक्त होत नर जा कै सिमरे, निमक न ताको गायो। माया को मद कहाँ करत है संग, न कहूँ जाई। नानक कहत चेत चिंता मन, होय है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदियाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन इर तप्त रहे। सात अरती जो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। जीवन तलब निवार होवे, परवाना करे तिंगाना। कल लखन विचार रहाओ, किते देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा। दाता धन करे तै नाही, महलो सारे न बैठा। जे को सत करे सो छीजे, तप कर तप न होई। जे को नाव ले बदनामी, कल के लखणी। जिस कदारी तिसे कवारी, चाकर के डरना। जा सिकदारी पवे जंजीरी, ता साकर हथो मरना। आख गुणा कल आईए, तेहो जुग केरा रया तपावस। जे गुण देता पाइए रहो, कल कल वाली सरा निवेड़ी। कहा जी कृष्ण हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद थर्वण करणी कीरत लहया। पत विण पूजा सत विण संजम, जत विण काहे जनियो। नावो तो वो तिलक चढ़ावो, सोच विण सोच न होई। कल परवान कतेव कुराण, पोथी पंडित रहे पुराण। नानक नाओ पया रहमान, कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले वड्याई, एदो पर कर्म नहीं। जे कर होंदे मंगण जाइए, फिर ओलामा मिले तही। राम कली महला पहला, जग प्रबोधे मड़ी वधावे। आसन त्या काहे सच पहावे, ममता मोह कामण हितकारी। ना उदूती ना संसारी, जोगी वैस रहो दुबदा दुख पहगे। कर कर मांगत लाज न लागे रहो, गावे गीत न चीने आप। क्यों लागे निभरे परताप, गुर के शब्द रचे मन पाए। बिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करे पखंड। माया मोह सहे जम ढंड, फूटे का पर पीख न पाए। बंधन वादे आवे जाए, बिंद न राखे जति कहावे। माई मांगत त्रै लोभावे, निर्दया नहीं जो तू जाला। बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला, पेख करे खिंथा बोवट थटुआ। झूठो खेल खेले भोनटुआ, अंतर अगन चिंता बो जारे। विण कर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान। मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जे व इंद्री साधु लुभाना। पशु पय नहीं मिटे निशाना, त्रैविद लोगा त्रैविद जोगा। शब्द बिचारे चोकस सोगा, ऊजल साच सो शब्द होए। जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पै नौ निद तू करणे जोग। थाप थापे करे सोहोग, जात

समूह संगत दे चरणा विच बेनती है कि गुरमुख परिवारों वालों पावन बाणी श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ गुरद्वारा साहब विखे करवाए जा रहे हैं। आओ पावन बाणी श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ आरंभ होण लगे हैं। सारी संगत गुरु दरबार विच पहुँच करके

श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख्या एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी।